0: पार्क, घैंडाकोट नगरपालिका कार्य अगाडि, घैंडाकोट 5, मोबाइल 98612204437।
1: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो।

लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।